0: तैयारी कर रहा है।
1: CIA ने खबरदार किया है कि गहरी होती अंदरूनी तकसीम इसराइल को खाना जंगी के खतरे से दोचार कर रही है। एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी खुफिया इदारे की एक खुफिया जायजा रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि गहरी होती सियासी, इक्तसादी और समाजी तकसीम इसराइल को खाना जंगी या रियासती खात्मे के खतरे से दोचार कर सकती है। अंदरूनी तकसीम के उनवान से जारी किया गया यह तज्जिया CIA के रेड सेल ने अगस्त में तैयार किया था। जायजे में इस बात की निशानदेही की गई है कि 27 अक्टूबर को मतवको पार्लियामानी इंतखाबात से कबल मुल्क को दरपेश अंदरूनी दबाव एक गैर मुस्तहकम अंदाज में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कशीदगी के अहम अवामल में मईशत में शदीद सकड़ाव, दिफाई अखराजात में तेजी से इजाफा, मकबूजा मगरबी किनारे में आबादकारों के तशद्दुद में इजाफा और इंतहाई कदामत पसंद यहूदी मर्दों को लाजमी फौजी सर्विस से मुस्तस्ना रखने के खिलाफ माशरे में पाई जाने वाली शदीद मुखालफत शामिल हैं।

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने 7 अक्टूबर के तीसरी बरसे से कबल गुफ्तगू करते हुए गजा में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा किया है। गुतरेस ने एक सरकारी बयान में कहा कि अब वक्त आ गया है कि जंग बंदी को मुस्तकिल किया जाए, अब वक्त आ गया है कि बड़े पैमाने पर इंसानी इमदाद की इजाज़त दी जाए और अब वक्त आ गया है कि बैन अल-अक़वामी कानून का एहतराम किया जाए। उन्होंने आलमी बरदारी पर जोर दिया कि वह पूरे खत्े में पायदार अमन के लिए एक सियासी रास्ता तलाश करे। गुटरेस ने इस बात पर जोर दिया कि यह बरसी सिर्फ सोग मनाने से बढ़कर होनी चाहिए, इस बरसी को न सिर्फ सोग का एक और साल करार दिया जाए बल्कि एक मुख्तलिफ मुस्तकबिल की तामीर के लिए एक नए अज़्म का निशान भी बनाया जाए, एक ऐसा मुस्तकबिल जिसमें इसराइली और फिलिस्तीनी अमन और सलामती के साथ अपने हुकूक, वक़ार और उमंगों की तकमील के साथ शाना बशाना रह सकें। गुटरेस ने कहा कि फ़िलिस्तीनियों ने बड़े पैमाने पर जान नुकसान, नकल मकानी और तबाही बर्दाश्त की है, उनके मसायब का भी अब खात्मा होना चाहिए। इस महसूर इलाके में इसराइल की बरसों पर मुहित नस्लकुशी की जंग में 74,200 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। गुटरेस ने एतराफ़ किया कि अक्टूबर 2025 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी में होने वाली आर्जी जंगबंदी से महदूद रिलीफ मिला, लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि ये अभी तक सिक्योरिटी, मुनासिब इंसानी इमदाद या बहाली और अमन का कोई मोतबर रास्ता फराहम करने में नाकाम रही है।
2: पेंटागन ने फोर्ट हुड के हमलावर नदाल मालक हसन को फायरिंग स्क्वाड के जरिए सजाई मौत देने की मंजूरी दे दी है। पेंटागन ने पीर के रोज जारी करता बयान में कहा है कि अमरीकी हुकूमत ने फोर्ट हुड हमले में मुजरिम करार दिए गए नदाल मलिक हसन को फौजी फायरिंग स्क्वाड के जरिए गोली मारकर सजाए मौत देने की मंजूरी दी है। पेंटागन के तर्जुमान शान पार्नेल ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर दिफा पैट हेक्स की तजवीज करदा सजाए मौत की मंजूरी दी है। सजाए मौत की तारीख और मुकाम का तायुन बरी फौज के वजीर करेंगे। वाजिर है कि साबिक फौजी माहिर नफ्सियात और मेजर हसन ने 5 नवंबर 2009 को टेक्सास में वाक़ फोर्ट हुड फौजी अड्डे में फायरिंग की, जिसके नतीजे में 13 अफराद हलाक और 32 जख्मी हो गए थे।
1: अमरीका में एक वफाकी जज ने तारकीन वतन पर आयद भारी जुर्मानों का निफाज रोक दिया है। इत्तला के मुताबिक बॉस्टन के ज़िले जज जॉर्ज ओटूल ने मुलपदरी के हतमी इकदाम के बावजूद अमरीका तर्क न करने वाले तारकीन वतन पर $18,00,000 तक के इंतजामी जुर्माने के निफाज की कोशिशें रोक दी हैं। जज ने इन जुर्मानों को गैर कानूनी तरीके से आयद किए गए जुर्माने करार दिया है। ओटूल ने यह फैसला गुज़िश्ता साल इमिग्रेंट लीगल रिसोर्स सेंटर की जानिब से दायर की गई एक इज्तिमाई दरख्वास्त पर सुनाया है। मुकदमे में उन हज़ारों अफराद में से 2 तारकीन वतन भी शामिल थे जिन पर वजारत दाखिला सलामती ने जुर्माने आयद किए थे। ओटूल ने इस बात की निशानदेही की कि ये जुर्माने दरख्वास्त गुजारों को अचानक माली तबाही से दो चार कर सकते हैं, लिहाजा इन इकदाम को रोकना इंतहाई ज़रूरी है।
2: अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पीर की शाम आइसलैंड पहुंचे ताकि ग्रीनलैंड से मुतलिक वाशिंगटन के एक माहदे के बाद कुतुब शुमाली में अमरीकी असर रसूख को बढ़ाने के लिए 3 यूरोपीय ममालिक का दौरा शुरू कर सकें। अमरीका वजारत ख़ारजा ने इस दौरे का ऐलान करते हुए एक बयान में कहा है कि रूबियो रिकशाविक में हुकाम से मुलाकात करेंगे ताकि इक्तसादी और सिक्योरिटी तआवुन पर तबादला ख्याल किया जा सके। ये बर्क रफ्तार दौरा जो जितना सियासी है इतना ही अलामती भी है। न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के हाशिए पर सितंबर के आखिर में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ अमरीका के एक सिक्योरिटी माहदे पर दस्तखत करने के बाद हो रहा है। इस माहदे ने बज़ाहर सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ग्रीनलैंड को खरीदने या अपने साथ जम करने की धमकियों का खात्मा कर दिया है। रवानगी से कबल रूबियो ने आइसलैंड को अमरीका का एक अच्छा दोस्त करार दिया है।
1: सदर ईरान मसूद पेजिशकियान ने आर्मीनिया के वजीर खारजा अरारात मेरजुयान के साथ मुलाकात में कहा कि मुस्तकिल पाबंदियाँ आयद करने वाले, कत्ल करने व माहिदा खिलाफ वर्जियाँ करने वाले दुश्मन के साथ मुजाकरात करना कोई मायने नहीं रखता। ईरान सदर के अलामिया के मुताबिक पेजिशकियान और मेरजुयान ने दारुलकूमत तहरान में मुलाकात की। पेजिशकियान ने मुलाकात के दौरान कहा कि अमरीका के साथ मुश्किल ये है कि जब भी हम मेज़ पर बैठते हैं हमारे सर पर जंग थोप दी जाती है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन इंतजामिया ने मुज़ाकरात के दौरान 3 मरतबा उनके मुल्क पर हमला किया और इससे जाहिर होता है कि अमरीका गुफ्तगू नहीं बल्कि ईरान को तबाह करने का इरादा रखता है। पेजिशकियान ने कहा कि उनके मुल्क ने एटमी सरगर्मियों के बारे में अपनी दयानतदारी कई बार साबित की है। ईरान बैन अल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की तरफ से सबसे ज़्यादा मुआयना किया जाने वाला मुल्क है, इसके बावजूद अमरीका बेबुनियाद दावों के जरिए ईरान पर दबाव डालता है। उन्होंने मजीद कहा कि वह अक़वामे मुत्तहिदा के फोरम से एटमी सरगर्मियों के बारे में निगरानी और बातचीत के लिए खुले होने का इजहार कर चुके हैं, मगर हर मुआयने के दौरान ईरान के एटमी मराकज और साइंसदानों की निशानदही करके उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है।
2: روسی حکام نے اطلاع دی ہے کہ ایک وسیع پیمانے کے ڈرون حملے کے جس میں 650 ڈرون شامل تھے نے رات بھر ماسکو اور اس کے اطراف کے علاقے کو نشانہ بنایا جس دوران ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے. علاقے کے گورنر اندری ووربیوف نے کہا ہے کہ ایک 20 سالہ نوجوان ماسکو کے ایک مضافاتی گاؤں میں ہلاک ہوا جبکہ کئی مکانات کو نقصان پہنچا ہے. خبر رسائی ایجنسی ریا یونیورسٹی نے رپورٹ کیا ہے کہ 6 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. ریاستی خبر رسائی ایجنسی تاس نے اس حملے کو گزشتہ 2 سالوں میں ماسکو اور اس کے اطراف پر ہونے والے دوسرے سب سے بڑے ڈرون حملے کے طور پر بیان کیا ہے. روس اور یوکرین نے حالیہ مہینوں میں طویل فاصلے کے حملوں میں شدت پیدا کی جن میں شہری اور صنعتی بنیادی ڈھانچے سمیت توانائی نقل و حمل اور بندرگاہوں نیز بحراسوت میں موجود بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے.
1: نیو یارک کی ریاستی گورنر کیتھی ہوچل نے خسرہ کے تیزی سے پھیلتے ہوئے کیسوں کے باعث ریاست بھر میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی ہے, خاص طور پر ان دیہی علاقوں میں جہاں ویکسینیشن کی شرح کم ہے. بڑھتے ہوئے واقعات نے حکام کو متحرک کر دیا ہے. جاری کردہ آرڈیننس کے مطابق نیو یارک میں اس سال سامنے آنے والے 108 کیسوں کا ایک بڑا حصہ جولائی کے وقت سے اب تک ریکارڈ کیا گیا ہے. ہنگامی صورتحال کے دائرہ کار میں انسدادی اقدامات کو بھی وسعت دی گئی ہے. لیے گئے نئے فیصلوں کے تحت دوا فروشوں کو 2 سال کی عمر سے بچوں کو ویکسین لگانے کا اختیار دے دیا گیا ہے, جبکہ نرسوں کے لیے مشتبہ کیسز میں براہ راست ٹیسٹ کی درخواست کرنے کا راستہ بھی کھول دیا گیا ہے. اگرچہ ریاست کی صورتحال تشویشناک ہے لیکن ہمسایہ ریاست پینسلوینیا میں حالات اس سے بھی زیادہ سنگین ہیں. پینسلوینیا میں کیسز کی تعداد 1000 سے تجاوز کر چکی ہے اور 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. بتایا گیا ہے کہ اس سال امریکہ بھر میں رپورٹ ہونے والے تقریباً 3900 کیسوں کے ساتھ ملک پچھلے 35 سالوں میں خسرہ کی بدترین وبا کا سامنا کر رہا ہے.
2: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ روس میں پھیپھڑوں کی وبا کے مشتبہ کیس کی نگرانی کر رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ واشنگٹن روس میں رپورٹ ہونے والے پھیپھڑوں کی وبا کے ایک مشتبہ مہلک کیس کے قریب سے نگرانی کر رہا ہے اور ماسکو کو مدد کی فراہمی پر تیار ہے. ٹرمپ نے پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ ہم اس معاملے پر بغور نگاہ رکھے ہوئے ہیں, ہمیں حال ہی میں اس کا علم ہوا ہے. ٹرمپ نے اس موت کو روس کے لیے ایک بڑا مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ برسوں پہلے نمونیا کا علاج زیادہ آسان تھا اور جراثیم اور بیکٹیریا زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں, لیکن ہم ان کی مدد کے لیے تیار ہیں. جو بھی اس طرح کے مسئلے کا سامنا کر رہا ہو ہم ہمیشہ اس کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی تصدیق کی ہے کہ واشنگٹن ان پیش رفتوں پر بغور نگاہ رکھے ہوئے ہے. صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں. اور لیجیے سامعین اب ایک گیت سماعت فرمائیے. گیت کے بول ہیں چچک بیجول اور گایا ہے حادثے نے.

सामिन, इथोपिया में सितंबर 2026 में होने वाली पेशरफ जाहिर करती है कि 2022 के प्रिटोरिया माहदे के बाद कायम होने वाला नाजुक सिक्योरिटी निज़ाम एक संगीन इम्तिहान से गुजर रहा है। टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, अम्हारा फानो नेशनल मूवमेंट और वुमो लिबरेशन आर्मी और मुख्तलिफ इलाकाई तंजीमों पर मुश्तमिल इथोपिया के अवाम का बकाए इत्तेहाद के 20 सितंबर को होने वाले ऐलान के फौरन बाद टिग्रे फोर्सेस की जानब से मेकेले, अक्सूम और शीरे के हवाई अड्डों का कंट्रोल संभाल लेने इस बहरान को महज एक सियासी अपोजिशन की कोशिश से आगे बढ़ा दिया है। अब चूंकि झड़पें अम्हारा और अफारा तक फैल चुकी हैं, इसलिए इस नए इत्तेहाद की ज़मीनी सलाहियत, वफाकी हुकूमत का रद्दअमल और प्रिटोरिया निज़ाम का मुस्तकबिल एक नई मसावात की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अगरचे अपने बानी बयान में इत्तेहाद ने अपना बुनियादी मकसद अबी अहमद की हुकूमत को इक़्तदार से हटाना बताया है, लेकिन इसी इत्तेहाद के अंदर TPLF और फानो जैसे धड़ों का एक साथ होना, जो 2020 से 2022 की जंग में एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, इस इत्तेहाद की अहमियत और इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी दोनों को वाज़े करता है। लिहाजा मौजूदा बहरान को महज TPLF और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक नई जंग के तौर पर देखने के बजाय 2018 के बाद से बनने वाले इथोपिया के सियासी निज़ाम के लिए एक वसी मगर ताहल गैर मुनज़्ज़म चैलेंज के तौर पर देखा जाना चाहिए। और शाम के शुमाली और मशरक़ी अफ्रीका के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कान देवी जोलू का इस मौजू पर तज़िया पेश खिदमत है। इस इतिहाद की सियासी वसत का यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि इस वक्त उनमें फौजी यकजहती भी मौजूद है। अगरचे अम्हारा फ्रंट पर TPLF और कुछ फानो अनासर के दरमियान ऑपरेशनल हम आहंगी के आसार नज़र आए हैं, लेकिन ओरोमिया में OLA की जानब से शुमाली झड़पों के साथ ही किसी बड़े पैमाने की फौजी मुहिम शुरू करने की तस्दीक अभी तक हुई है। इसी तरह इतिहाद के कुछ छोटे धड़ों की शमूलियत और उनकी फौजी सलाहियत के बारे में भी शकूक व शुबहात मौजूद हैं। ये सूरत हाल जाहिर करती है कि यह इत्तेहाद मुल्क भर में किसी मरबूत मुतबादल फौजी क़ुव्वत के बजाय अबी अहमद के इंतजामी के खिलाफ मुश्तरका मुखालफत की बुनियाद पर इकट्ठा होने वाला एक गैर हमजिन सियासी और फौजी ढांचा है। इससे भी बड़ा मसला ये है कि